0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Bani kehti hai jyo aape chalave tive koi chale jyo har paave bhagwana kehat nanak tu sacha sahib kaun jaane tere kam. Ek aadmi mere ko aaya, usne mujhse kaha, Maharaj ji, हमने आपसे ये मांगा था और आपने कहा था हो जाएगा और हुआ नहीं. मैंने कहा एक कथा सुनाता हूँ, आराम से सुन ले यहाँ बैठकर. बोला बताओ. मैंने कहा महाराज दर्शनदास जी के पास ऐसे ही तेरी तरह एक सेवादार आया और महाराज जी जो कहते थे उनकी वाक सिद्धि थी, मुख से जो कहते थे वो हो जाता था. तो क्या हुआ, महाराज जी के पास वो सेवक आया और महाराज जी को कहने लगा गुरु महाराज जी से, महाराज जी मैं बाबा जी मैं आपके पास आया हूँ ये कार्य लेकर, आप कृपा करो. तो महाराज जी बड़े खुश थे, हंसते हुए उसको और उसकी बीवी को कहते हैं क्या चाहते हो तुम दोनों, कि चाहते हो कि मैं थोड़ा कम कर दा ये वाला. गुरु नानक सच्चे पातशाह मारे ने नानक दा उत्ते ध्यान दिता, नानका करी कृपा, रहमत करी, कृपा करी, और नानक नु हमेशा अगे रख दे नानका. नानक नूं जिदा असीं अपने गुरु नूं अगे रखदे, गुरु महाराज जी ये कर दो, बाबा जी नूं ये दे दो. बाबा जी ने मुझे कहा तो मैंने गुरु को कहा गुरु महाराज जी दे दो, गुरु ने दे दिया. वो बीबी आती रोती हुई, मैं गुरु महाराज जी दे दो, दे दिया. कोई आता मेरे पास, मैं दे दो. तो हर आदमी को इस तर्जमे में गुरु को कई वक्फा बीच में नहीं शरीक करता. तो मैं उस बंदे को समझा रहा था, मैंने कहा एक बारी की बात है, महाराज जी ने कहा तो सेवक आया कोई महाराज जी के पास, तो बोला महाराज जी ये कृपा कर दो. महाराज जी बोले अच्छा पुत्र, गुरु नानक से कहा नानका करो कृपा, रहमत करो, करो कृपा इन्हां दे ते, कम कर दो इन्हां दा. चलो जी कम हो गया. संत संत संत तो वाक सिद्धि का मालिक है, वो तो करामात तो बहुत छोटी हो गई बातें, तो ये चमत्कार चुमत्कार तो बहुत छोटे हैं. वो रब से मिलाता है, जो रब से मिला सकता है बाकी चमत्कार तो बहुत छोटे हो गए, सोचो जरा. तो वो बंदे आए महाराज जी से मांगा, तो महाराज जी ने कह दिया ठीक है मेरा नानक कृपा करेगा, नानक पातशाह कृपा करेगा. अब क्या हुआ, वो घर गए और उनका काम नहीं बना. वो महाराज जी के पास आए, उसी दौरान उनके साथ एक उनके मित्र भी थे, वो भी उनके साथ आए थे महाराज जी के पास. पर उनके मित्र ने जो मांगा था, महाराज जी ने उनको भी कहा पुत्र चलो अच्छा, तुम्हें उनसे ये भी पूछा नहीं कि तुम्हारा काम क्या है. उनको बोला तुम्हारा ये काम है दो दिन में, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी थे तो मिनट में बोल देते थे ये तुम्हारा काम है ये हो जाएगा. उनको दो दिन का वचन दे दिया दो दिन में हो जाएगा, और इनको हफ्ते का वचन दे दिया हफ्ते में हो जाएगा. अब क्या हुआ, वो जो दोस्त आए थे उनके साथ, उनका तो काम हो गया, वो तो खुशी से कहने लगे साडा काम 3 साल तो अड़िया सी, एक दो दिन च ही करता महाराज ने रहमत कृपा कर दीती. पर जिन्हों का उन्हों का अपना काम सी वो नहीं होया, तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी के पास फिर से आ गए. तो आके कहने लगे हफ्ते बाद, महाराज जी से कहने लगी उनकी बीबी जो गुरमुख सी, उनकी औरत आके कहती है बाबा जी साडा तुसी काम नहीं कीता, तुसी उन्हां दा काम कर दिता, होर बड़ी दुनिया दे काम कर दिंदे हो, साडा ते नहीं तुसी कीता. बाबा जी कहन लगे हाँ पुत्र तुम्हारा काम नहीं बना, ठीक कह रही हो. तो बाबा जी फिर आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ करते हो, तो साडनूं तुसी वचन भी दिता सी, आपका वचन था एक हफ्ते में हो जाएगा, तो आपके वचन पूर्ण होते हैं. तो महाराज जी ने कहा पुत्र पूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही का बात कहा कि होते हैं, पर तुम्हारे केस में कुछ अलग से बात है. तो महाराज जी ने कहा कोई गल नहीं पुत्र, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, अभी बता.

0: आएंगे हम तुम्हें। वो जिद पड़ गई। अब जिद ऐसी पड़ गई कि वो कहती, नहीं जी नहीं महाराज जी, आप मुझे हमें बताओ क्यों नहीं हुआ, आपका वचन पूरा क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। तो महाराज जी बार बार बोले तो महाराज जी को ना दुख लगा कि एक तो तू तेरी गलती खुद की है। तो महाराज जी ने उसको फिर कहा कि पुत्र अब सुनना चाहती है कि क्यों नहीं हुआ काम, अब सुन ले। जिस दिन हमने गुरु से कहा, अपने मालिक से कहा, नानक से कहा, सच्चे पातशाह से कहा काम कर दो, काम तो उसी दिन हो गया था, पर तेरे कारण एक काम नहीं बना। और तू ही हमें कह रही है अभी आकर, क्या किया तूने? जब तू घर गई यहां से, तो तू रस्ते में यहां से जब गई तो अपने आदमी से तू क्या चुगलियां कर रही थी हमारे दरबार की और हमारी? क्या चुगलियां कर रही थी तू? लंगर ठंडा सी, बाबा जी सानू बैठन वास्ते थले एक पतली जी दिती है, की दरबार है साढ़े, क्या केयर नहीं की थी, ध्यान नहीं रखिया, ये की हो जाए तो कितने लाए सानू इतने? ये कहती हुई गई थी ना यहां से। फिर दो दिन बाद जब मेरे गुरु ने तेरे घर में प्रवेश करके तेरा काम करना था दो तीन दिन में, फिर तूने निंदा चुगली कर दी। क्या किया था तूने अपने भाई के साथ? क्या बैठ के किया था? बात क्या कर रही थी वहां? और फिर हफ्ते बाद फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, इस बच्चे का काम करो, इसको रहमत करो। कहते फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रहमत की थी, तरस की था तेरा काम करने के लिए। तीसरी बार हम यहां से, मेरा मालिक निकला तेरा काम करने के लिए, पर तूने वहां फिर क्या किया? अपने आदमी को लेके किसी और साधु के पास पहुंच गई कि तुझे विश्वास ही नहीं है हम पर, बस ओ ते ऊपर रंग लाल पीला चिट्टा नीला हरा रंग हो गया उसका, तो एक रंग आवे एक रंग जावे। अब वो बीबी शर्मसार हो कहती, बाबा जी आप सब जानते हो? कहते बीबी मैं सब जानता हूं, ये तू आई ना आज, आज तू जबरदस्ती आई है, तेरा मन नहीं था अंदर से आने का, ये भी मुझे पता है। ये तेरा आदमी अच्छा है, इसको पूर्ण विश्वास है हम पर, इसको पता नहीं हम पे क्या दिखता है, तेरा आदमी तुझे खींच के यहां लाया है, तेरे में भरोसा नहीं है, तू तो चुगलियां करती है हमारी। बस ये बात महाराज जी ने उसके बताई, उसका एक रंग जावे एक रंग आवे। वो तो बस बीबी ने चरण पकड़ लिए, कहती माफ कर दो गुरु महाराज जी, आपको तो सब पता है। बोले मुझे नहीं पता, मेरे मालिक को सब मालूम है, मैं अपने मालिक को कहता रहा जा काम कर मेरे प्रभु, तो उसने कहा किसका काम करूं, ऐसे लोगों का जो हमारी चुगली करे, हमारी निंदा करे हैं, और ऐसे यहां भरे पड़े हैं सारे के सारे, आते भी हैं और विश्वास नहीं लेकर आते, यहां तो कहना पड़ता है प्रभु आपको दे दिया, आप करो, आप संभालो, आप गुरु महाराज जी आपको सौंप दिया, देख लो आप सब कुछ, बहादुर बनकर आओ, ताकतवर बनकर आओ, और एक तरफ होके आओ, सच्चे ते सच्चे ते सच्चे बन के आओ, श्रद्धावान बन के आओ, श्रद्धालु बन के आओ, विश्वास लेके आओ, और क्या लेते हैं हम आपसे, अब तक कुछ चाहते ही नहीं इसके अलावा। कहानियां हैं, साखियां हैं, आपके काम आएंगी, संभाल के रखिए इन्हें, और बार बार सोचते रहिए, बार बार सोचते रहिए इनके बारे में, ताकि आपको कुछ भूले ही ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना सब कुछ मैं समझाता हूं हमेशा, आप घर जाते जाते फिर भूल जाते हो। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आप याद क्यों नहीं रखते कर्म नवाजी को, गरीब नवाजी को? याद रखा करो। तो याद कैसे रखना है? कैसे रखना है याद? कैसे रखना है? सोचते रहना है, गुरु के बारे में मनन करते रहना है, चिंतन करते रहना है, गुरु के बारे में सोचते रहो सोचते रहो। मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर बोलता हूं, जिसके बारे में ज्यादा सोचोगे
1: अगर आप किसी से प्यार करते हो और प्यार के बारे में ज्यादा सोचोगे, बारा ज्यादा मनन करोगे, बार बार सोचोगे प्यार के बारे में, तो प्यार बढ़ेगा कि घटेगा, उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, गुरु के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा? सोचो घर जाके, बार बार सोचो गुरु के बारे में और भगवान के बारे में, प्रभु अविनाशी के बारे में। तो कैसे सोचना है? इकट्ठे होके बैठ गए, ढोलकी बजाओ, बाबा जी तेरे नाम दे दीवाने। हाँ, ये ढोलकियां बजाओ, गीत गाओ, संगीत गाओ, आनंद लो, जीवन को निखार के परे कर दो। बार बार सोचो गुरु के बारे में, बार बार सोचो भगवान के बारे में, भगवान की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा और जो चाहिए होगा भगवान आपको और गुरु आपको लो दे दिया। ये बोलते दे दिया, क्या करना उन्होंने रख के सब कुछ आपको दे दिया, ले ओ। 1% अगर आप शक करते हैं, शक आपकी सोच में संशय आती है, शक आता है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो आप कई साल पीछे हो जाते हो अपनी श्रद्धा से, पिछले कई साल, एक दिन नहीं, कितने साल, कई साल, एक शक से, एक शक की दृष्टि से। मत करिएगा ऐसा का, आपको किसी ने कह भी दिया ना, कोई भी आके आपको आपके गुरु के बारे में और आपके आपके भगवान, अपने प्रभु अविनाशी के बारे में तोड़ना चाहे, तो आप उसको कहिएगा कि से प्यारे मेली, रब को रोज कहना से प्यारे मेली। एक तो मिला ये ही मत ऐसे लोग जो तेरे बारे में प्रभु चुगली करके चले जाए, निंदा करके चले जाए, ऐसे लोग चाहिए नहीं जीवन में। वाणी कहती है जो ना भजनते नारायणा, जो परमात्मा को याद नहीं करती जीव आत्माएं, फिर क्या करना है, क्या करना उनका, तिनका मैं ना करूं दर्शना, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता, चाहे मेरा घर का कितना भी अजीज क्यों ना हो, मेरे घर का कोई ऐसा हो जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा, पर अगर वो भगवान नहीं करता और मुझे रोकता है, ऐसे भी आएगा, माया कहते हैं उसे, जो बेटा आपको भगवान से तोड़े वो बेटा नहीं वो माया है, जो बीवी आपको भगवान से, गुरु से तोड़े वो बीवी नहीं वो माया है, जो पिता माता आपको भगवान के घर से तोड़े, गुरु के घर से तोड़े, वो बाप और माँ नहीं वो माया है, बच जाओ उनसे, उनको तोड़ दो पर अपने परमात्मा के साथ जुड़े रहो बस।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं उरन विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो फटाफट एक छोटा सा कॉल कर आप अपने हाल चाल बता सकते हैं। मेरे बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि गगन आप कैसे हैं। नंबर है वही जाना पहचाना 01204060205, अर्थात 120-40-60-205 के जरिए आप हमसे तालमेल जोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गगन अकेला है या कोई मेरे साथ खास मेहमान है, तो चलिए ज्यादा मैं देर आपको नहीं कराऊंगा, मैं उनके बारे में बताऊंगा जरूर। लेकिन एक खास विषय है जिसके बारे में अक्सर हमने सुना है, जाना है, समझा है, लेकिन उसको जब आप डिटेल में जानेंगे तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। थोड़ा सा छोटा इशारा कर देता हूं, CSR ये क्या है, किस तरीके से काम करती है धरातल पर, इसी के बारे में जानेंगे, और इसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। वो कौन है, कहां से, बताऊंगा जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था सीएसआर क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और सरकार क्या कहती है, इसी के बारे में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है और जाहिर सी बात है कि वो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं सीएसआर हेड वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसे हैं सर आप?
1: मैं ठीक हूँ सर।
0: तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ सत्कार के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और यही दिमाग में मेरे आता है, जैसे अभी देशराज जी से मेरी ऑफेयर बात हो रही थी कि लेमैन की तरह हम बात करेंगे, एक जनमानस क्या सोचता है सीएसआर के बारे में, जानना चाहता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। सीएसआर के बारे में अगर आप परिभाषित करें तो किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे?
1: देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो सन 2013 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कॉर्पोरेट्स हमारे भारत में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं या गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनको उनकी सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति जागरूक करना और वो कुछ एक्शन करें उस बारे में। तो वो पहले सारी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, घराने जो हैं वो अपने हिसाब से चैरिटी वगैरह करते रहते थे, बट अब इस कानून की माध्यम से ये उनके लिए करना मैंडेटरी हो गया। तो अगर आप देखें तो हर 3 साल में के एवरेज प्रॉफिट के 2% अमाउंट जो आता है कंपनी का
0: जी,
1: वो उसको सीएसआर में मैंडेटरी यूज करना होता है एज पर लॉ। तो काफी सारी कंपनियां इसको समुदाय स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, आपका रूरल डेवलपमेंट है, आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है
0: जी,
1: देन लिवलीहुड प्रमोशन है,
0: राइट,
1: ओल्ड एज केयर है। तो ये सारे विषय, बहुत सारे बिंदु है इसमें, जो एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल 7 में लिस्टेड है, तो वो सारी एक्टिविटीज पे ये खर्च करना होता है
0: जी जी। सो लिसनर्स, अगर मैं इसको समराइज करूं, इसका एक निष्कर्ष निकालूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, मैं भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि लोकसभा द्वारा संशोधन विधेयक 2019 में ये पारित किया गया था और जो आप जानकारी दे रहे हैं वाकई बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि यही रिसर्च में निकल कर भी आ रहा था। सो इसके जो मायने हैं लिसनर, सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कौन कौन से वो बिंदु हैं जो सर ने हमें बताया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जरूर जानेंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। और इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी, जो कि हेड हैं सीएसआर वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से जुड़े हुए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
2: सारे शहर में नाम तुम्हारा दीवारों पे लिखता है।
3: दी टाइम नहीं है सबके लिए, सबके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक अच्छा सोल्जर बनना चाहता हूँ।
4: किसने रोका है?
2: सारे

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक खास विषय है जिस पर हम बात करने के लिए आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक मेहमान के तौर पर जो कि सीएसआर वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट से आते हैं, आप उसके हेड हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: हिंदुस्तान का जो एक कल्चर रहा है तो सर हम कहते हैं कि आपने कुछ कमाई की है तो उसका 10वां भाग सामाजिक कार्यों में लगाएं। कहते हैं कि एक हाथ से आपने कमाई की या यूं कहें कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए जब आप सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं। यहाँ जो कल्चर हम देखते हैं यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा होता चला जाता है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पर जाते हैं, लोग भी इस बात को जानते हैं समझते हैं। तो जब लोग काम कर रहे होते हैं शोशेबाजी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, फोटो सेशन हो जाता है। एक विषय है जिसमें पारदर्शिता का जिक्र हुआ है जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर एज फार एज सीएसआर कंसर्न, क्योंकि ये कोई चैरिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉर्पोरेट की टुवर्ड्स द कम्युनिटी वेयर दे आर वर्किंग। ठीक है, तो उस समाज के प्रति आपको कुछ ना कुछ करना है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो एज अ सीएसआर हेड हमें ये देखना है कि कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो वास्तव में उस जरूरतमंद समुदाय के पास पहुंचे, और ये ज्यादातर हम लोग सुनिश्चित करते हैं जिसमें हमारी मदद अधिक से अधिक मदद जो लोकल एनजीओज होते हैं जिनकी खासी पकड़ रहती है समुदाय के ऊपर, जान पहचान रहती है विलेजर्स के साथ, तो उनकी मदद हम लेते हैं कि इसको धरातल पे हम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली कैसे उतार पाए। सो दीज एनजीओज आर रियली हेल्पिंग अस इन डिलीवरिंग द इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट एट वॉट
0: वाकई बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, जो कि मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा था। इस बात को मैं समझना चाह रहा था क्योंकि मेरे जरिए वो लिसनर समझना चाह रहे थे, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाते हैं हम उनको जब इकट्ठा करते हैं तो कुछ कुछ समस्याएं भी आ रही होती हैं। चूंकि आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया तो थोड़ा आप मुझे उसके बारे में बताएं कि ये जो कंपनी है जिसके आप हेड हैं किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप ग्राउंड में जाते हैं, क्या काम करते हैं?
1: सो बेसिकली गगन भाई, इन इंडिया वी आर ऑपरेटिंग हाईवेज, हम लोग हाईवे मैनेज करते हैं, तो तकरीबन मोर देन 8000 लैंड किलोमीटर वी आर ऑपरेटिंग राइट नाउ, एंड वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस इन मोर देन 10 स्टेट्स। तो इन 10 स्टेट्स में कुछ कुछ हाईवेज हैं जो हम ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं, तो ये हमारा कोर बिजनेस है। अगर मैं सीएसआर की बात करूं तो यस, जहां जहां पर भी हमारे असेट्स हैं उसके आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, उनका उनके हेल्थ केयर पे, उनका लेवलीहुड कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं उसके ऊपर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप सुना होंगे मैंग्रोव के बारे में, मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में।
0: जी, मैं इसको डिटेल में जाना चाहूंगा आपसे, आप प्लीज बताइए।
1: तो मैंग्रोव इन गुजरात इन द क्रीक ऑफ खंबात वी हैव क्रिएटेड मोर देन 300 हेक्टर ऑफ ग्रीन कवर थ्रू मैंग्रोव प्लांटेशन।
0: ओके,
1: सो उसके फायदे ये है कि इट नॉट ओनली जनरेट लोकल लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी विच इन्वॉल्व इन प्लांटेशन एंड ऑल दिस स्टफ, बट उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल बेनिफिट है वो काफी हाई है। पूरे जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम को वापस रिस्टोर करना, मैंग्रोव आपको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन सिक्वेस्टर करते हैं, ठीक है, बाय एनी अदर प्लांट। तो जो आजकल हम CO2 एमिशंस की बात करते हैं या जो ग्रीन कवर हमारा कम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे
0: जो पौधारोपण आप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करता है जिस पौधे का आप जिक्र कर रहे हैं, तो लिसनर्स इस तरीके से मैंने समराइज करके ये बात आप तक पहुंचा दी। वाकई बहुत अच्छा एक विषय है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या क्या काम किया जाता है, बहुत विस्तार वाला एक क्षेत्र है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, और ये काम मुझे लगता है कि ये पहले क्यों नहीं शुरुआत हुई इस चीज की। जो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि आप भला कीजिए भला होगा, एक लाइन के साथ वो बातें सर हमारे सामने आती हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, और सरकार ने ये एक अच्छा प्रयास किया है जो आज हमारे सामने है, तो निश्चित तौर पर ये आगे भी जाएगा और लोगों के हित में काम करेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, सो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। एक विषय है, एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR के हेड हैं, आप हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: सर हमारा रेडियो पहले बात करता है फिर म्यूजिक सुनाता है। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी तनाव बहुत ज्यादा हो जाता होगा, कौन सा एक गाना जो आपके दिल के आसपास रहता है वही गाना हम प्ले करेंगे? मुझे लगा कि पहले बात में यहीं से शुरुआत करता हूँ, मुद्दे पे तो आता ही रहूंगा कि आप गाते भी होंगे, गुनगुनाते होंगे।
1: मैं अगर मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में काफी शौक रहा करता था मुझे गानों का।
0: अभी भी कॉलेज के इतनी है सर आप?
1: अब बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं उस उम्र के तो मैं थोड़ा, आपने जैसे ही गाना बोला मैं रिकॉल करने लगा कि मुझे क्या क्या गाने पसंद थे।
0: जी जी
1: ठीक है, मेरे समझ में जो अभी तो खैर कॉर्पोरेट लाइफ में वो सब कहीं भूल से गए हम लोग गाना गुनगुना।
0: कोई भी आसपास होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, नेचर के लिए।
1: मैं जब फिल्में वगैरह ज्यादा देखता था वो 90 का दशक था और उस समय आई थिंक एक मूवी आई थी अकेले हम अकेले तुम। हाँ, शायद
0: आमिर खान मनीषा
1: तो उसका एक गाना है कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं।
0: क्या बात है। ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ और जो टॉपिक है उस पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल दोस्तों ये गाना प्ले करते हैं और ये हमारे जो गेस्ट है उनकी फरमाइश है। और वाकई मुझे लगता है कि स्ट्रेस तनाव बहुत आसपास रहता है जिंदगी में, खुशियां भी हैं गम भी हैं, लेकिन गम को भुलाने के लिए एक म्यूजिक ऐसा जरिया जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और यकीन मानिए कि मेरे मेहमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब मैं

गाने का जिक्र किया है और आप जब ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी पुराने दौर में चले जाएंगे। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए CSR वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप CSR डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद गगन जी।
0: थोड़ा चैलेंजेस के बारे में मैं अगर आपसे जानूं कि जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, NGO से मिलते हैं, सरकार की कुछ योजनाएं हैं आप आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुछ कुछ नया और आए, नए बदलाव आए, या कुछ चैलेंजेस जो आपने फील किए हैं तो अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं तो वो मैं भी समझ पाऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। सो गगन जी, ये बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है जो हम CSR में जो हम काम करते हैं। तो कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में तो प्रायोरिटी रहती ही रहती है, बट उसके साथ साथ काफी चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हम कभी कभी महसूस करते हैं। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो कई बार कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहती
0: है,
1: आवास योजना है या आयुष्मान कार्ड है, कई बार हम ये सामना करते हैं कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो जरूरतमंद है उसको पहले मिले सेवाएं।
0: जी,
1: अब कुछ गवर्नमेंट स्कीमें भी रन हो रही है पैरेलल, कुछ हम भी हेल्थ कैंप वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में हम लोगों को एलोकेट करना पड़ता है वो फंड, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, अदरवाइज जो काम गवर्नमेंट कर रही है वही आप भी कर रहे हो, तो आप उसी चीज को दोहरा रहे हो और आप पैसा भी वेस्ट हो रहा है उसमें। सेकेंड, जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं CSR के थ्रू वो हम नीड बेस्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, जहां कोई स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है, जो जिन तक लाभ पहुंच नहीं पाया, उनको भी हम शामिल कर सके इसमें। लिमिटेशन कई बार ये होती है कि हमारे पास भी बहुत लिमिटेड किटी होती है। ठीक है, अब वो उस लिमिटेड किटी में बहुत लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो कई बार हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं।
0: वो किसकी रिक्वायरमेंट आती है, आम जनमानस की?
1: जैसे कि जनरली दो तीन चीजें होती है उसमें। आम जनमानस डायरेक्टली हम तक वही पहुंचता है जो हमारे प्लांट्स या हमारे एसेट के आसपास रहता है।
0: जी,
1: इन माय केस वी आर हैविंग हाईवेज, तो हाईवेज के आसपास जो गांव बसे हुए हैं या लोग बसे हुए हैं, तो वो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो वो आते हैं अपनी डिमांड लेकर,
0: जी,
1: कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेकर के, हमारे गांव में स्कूल बना दीजिए, हमारे गांव में कुछ शौचालय बनवा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
0: जी,
1: कुछ होती है हमारे स्टेक होल्डर के तरफ से, जैसे कि वहां के लोकल DM हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, तो उनको कुछ लगता है कि भाई इस एरिया में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं।
0: वेरी गुड।
1: मेजरली जो NGO पार्टनर्स हैं वो अलग अलग प्रपोजल्स लेके आते हैं हमारे पास साल में, तो ये वो महीने होते हैं जनवरी से लेके मार्च तक, जब हम पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रिपरेशन करते हैं इन सब रिक्वेस्ट लेटर्स के साथ।
0: वेरी गुड। सर, कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है, या जो मैं बात कर रहा था कि आप और हम, यानी कि जनमानस, लोग अवेयर तो हैं, लोग काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और वो NGOs की बात हो, CSR की बात हो, तो इसका मतलब उनके भी दिमाग में है कि कोई एक ऐसी चीज है, एक फंड आता है और इस तरीके से वो सामाजिक कार्यों में लगता है। तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सुनो शारदा 90.8 FM को चुना है, अपने मन की बात आप यहाँ कह रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में बातें बता रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं लिसनर्स, और चूंकि बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, कुछ और बातें अगर निष्कर्ष निकलना बाकी है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे जो हेड साहब हैं श्री प्रियेश जी, उनसे जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुरक्षित चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। हर रोज मैं सुनु शादा 90.8 एफएम पर एक अपील आप लोगों से कर रहा होता हूं। रोड रेस की घटनाएं होती हैं, अमूमन इतने झगड़े बहुत बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से जनधन हानि हो जाती है। सुरक्षित चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने फैमिली के पास पहुंच पाएंगे, सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सुरक्षित नहीं चलेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ताउम्र हमें एक पछतावा होता है क्योंकि आपके शरीर का अंग भंग हो चुका होता है कि काश उस वक्त मैंने रोड सेफ्टी के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता। नमस्कार, एक बार फिर से शुरू शादा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये एक विषय आता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑफ एयर अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे सर से, तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ स्टूडियो में आज एक खास मेहमान है। शुक्रगुजार हूं मैं देशराज सर का जिन्होंने ये एक साक्षात्कार हमें दिलवाने का मौका दिया। और हम बात कर रहे हैं वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सीएसआर हेड हैं श्री प्रियेश राठौड़ जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गंभीर मुद्दा है रोड सेफ्टी वाला, रोड एक्सीडेंट वाला, लोग नहीं मानते, लोगों को पता है कि हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। मैं खुद रोड सेफ्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो कि मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन चीजों को मैं नजदीकी से देखता हूँ। यही वजह है कि मैं रेडियो पर भी लगातार बोल रहा होता हूँ। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीएसआर आपकी एक्टिविटी है, इसके तहत जब आप काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके के आंकड़े हैं, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है सर?
1: देखिए गगन जी, अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो ये बहुत ही क्रूशियल है हमारे पूरे देश के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से।
0: जी,
1: उसके दो पहलू हैं। एक तो है कई कई जगह पे इंजीनियरिंग इश्यूज हैं रोड्स में, हाईवे,
0: ये तो नितिन गडकरी साहब ने कहा है सबसे बड़ा इश्यू है।
1: दूसरा जो बहुत बड़ा इश्यू है वो है लोगों का बिहेवियर,
0: ये भी है।
1: ठीक है, आप सड़क पे देखोगे कितने सारे टू व्हीलर्स, उसमें से कितने हेलमेट लगाते हैं।
0: जी,
1: सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट लगाती भी है तो ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, आप देखना उसकी बेल्ट तक सीधी नहीं बांधी जाती है।
0: सही ऑब्जर्वेशन से, ठीक है।
1: तो हमारा क्योंकि हम हाईवे सेक्टर है हमारा, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करें। उसके लिए हम कैंप्स लगाते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हेलमेट्स वगैरह भी, उसके रेडियो

0: आप यूपी में अगर अभी देखो तो फॉग का मौसम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है गांव गांव जाकर, स्कूल में, कॉलेज में जाकर, इंटर कॉलेज में जाकर लोगों को, बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सिखाएं
1: जी।
0: उनको यातायात के नियम हम बताते हैं, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जान हम बचा सकें बिहेवियर पे थोड़ा सा सुधार लाके।
1: बेशक,
0: तो ये हमारी एक अहम प्राथमिकता है कि कई बार हमने देखा है कि परिवार में एक ही आदमी कमाने वाला होता है और उसकी रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, फिर उस परिवार पर आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या हो जाता है
1: जी।
0: तो ये एक बहुत गंभीर विषय है हमारे देश के लिए, और हम लोग हमारी वी आर डूइंग अवर बिट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट कर सके आपके माध्यम से।
1: बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी जान बेशकीमती है, और सर दो लाइनें हैं जो खुद सोची, कभी लिखी, या यूं कहें कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। सुनो शारदा, कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, उनका हक है। तो उनकी खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपकी सलामती की कहीं ना कहीं दुआएं कर रहे होते हैं। और अगर एक महिला को जब हम देखें भारतीय संस्कृति में, जब एक त्योहार आता है करवा चौथ, वो एक पति की लंबी उम्र की कामना करती है, और जब बहुत अफसोस होता है कि पता चला कि वही व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था। अक्सर हमने देखा है सर कि लोग बाइक पर जा रहे होते हैं, महिला पीछे अगर बैठी है तो वो पति का हेलमेट का सामान अपनी गोद में लेकर बैठी हुई होती है, यानी कि वो इतना भी नहीं कह सकती कि प्लीज आप हेलमेट लगा लें क्योंकि ये आपकी जान से जुड़ा हुआ है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारा जो रेडियो स्टेशन है वाकई इसी तरीके के काम करता रहता है, लोगों के बीच में जाता है, लोगों को अवेयर करता है। सो लिसनर्स, मैं दिल की गहराइयों से सर का शुक्रिया अदा करूंगा, और एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहूंगा, CSR हेड जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के आप हैं, श्री प्रियेश राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े रहे। तो सर अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट रही गगन, मैं ये कहना चाहता हूं, तो आप कह सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका और शारदा यूनिवर्सिटी का कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और आपसे बातें करने में बड़ा मजा आया मुझे। एक चीज मैं जरूर की ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सड़क यातायात पे गंभीरता से लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान है हमारी कंट्री को, आर्थिक, आपकी खुद की परिवार की जो लॉस है ही है, बट एज अ नेशन हमारी इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब एक युवा की मौत होती है या एक महिला या एक बच्चा एक्सीडेंट में अगर विकलांग हो जाए तो यू कैन इमेजिन
1: जी।
0: सो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से विनंती है कि सड़क पे आप यातायात का नियमों का अच्छे से पालन करें, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट।
1: क्या बात है। आखिर में ये जो संदेश है, ये जो बातें हैं, कि आप सभी को दिल से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तभी काम करती हैं जब आप सुरक्षित चलेंगे, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो एक बार फिर से सर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक सामाजिक काम आप कर रहे हैं, और जब हाथ से हाथ मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम दोनों आगे ही जाएंगे। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9211। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से वो संपर्क माध्यम मैं आपको बता देता हूं, 120 40 60 205, फिर से दोहरा देता हूं, 120 40 60 205 के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बताएगा जरूर कि ये चर्चा कैसी रही। इसके अलावा मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं, 90.8 FM @sharda.ac.in के जरिए आप हमें पत्राचार कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आपके लिए खुले हुए हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
5: For more information, please call Dr. Ramneet 98

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह छुपते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
0: क्या क्या हो बेटिया?
2: डॉक्टर साहब
3: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
4: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
2: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
3: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
5: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में। यहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर वेबी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं नवादा में और अपना क्लिनिक चलाती हैं, और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे। और ख़ास करके हम जो गर्भवती महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं परिवार में, परिवार की धुरी होती हैं, और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये सभी बातें आज हम डॉक्टर वेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर वेबी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा, खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है, और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी क्या वजह है बीमारी की, और किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर, जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए, उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन, खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs है उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो, या तो HB कम होता है, या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी, और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए, या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी। तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं?
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में, अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो ज़रूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें, ताकि एक रीज़न का पता चल जाए। जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए। जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाई डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एनीमिया कोज कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीजें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूँगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ क्या करती हैं 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम, अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, एक या दो चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में, जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज्यादा केसेस आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूँगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
0: जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उनका कैसे ध्यान रखें, जो माता है या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
1: लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की, क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो आरबीसीज हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यूबॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं, ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले, माता हैं, वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर, और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल की लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य

0: 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को, जिस किसी को भी मानते हो, तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर, और ना किसी दूसरे के लिए।
1: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर बेबी शर्मा जी, आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हीट वेव के बारे में भी सुनते हैं, लू के बारे में भी सुनते हैं, तो किस तरह से लोग, महिलाएं, बच्चे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, क्या खाएं, क्या पिएं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
0: सबसे पहला तो बचाव यही है सर, अगर हमें किसी भी चीज से बचना है तो उस चीज से दूर रहो। तो अगर आपको पॉसिबल है, जितना आप घर पर रह सकते हैं तो उतना आप घर पर रहिएगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको काम करने के लिए भी निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अपना बचाव कीजिएगा, अपनी बॉडी को कवर करके निकलिएगा। खासकर आपका जो सिर वाला रीजन है, जहाँ पे हीट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको आप कवर करके निकलिएगा, और अपने साथ हाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल है, वो एक बोतल पानी में घोल के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। और बजाय कि आप चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने के, आप रास्ते में भी कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने या कुछ जो ये जलजीरा टाइप के आते हैं ये पी लिया, मतलब अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कवर करके निकलना है। तीसरा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, घर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कुछ भी हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके निकलना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा कोई साधन है, तो अपने बैग में एक दो फ्रूट्स जरूर रखिएगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर

0: हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं, फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
7: मनोज, काहे मुँह लटकाए बैठा हो, का बात होगी?
8: अब कहो बताओ भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
7: तो का हुआ, मिलो ना? तो
8: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
7: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है, पिताजी को नाम कुछ और गेर दिया?
8: ना वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
7: तो का बात है
8: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
7: ए तो यहाँ इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
8: तो अभी वो ठीक ना होवे?
7: बिल्कुल होगी। यूं मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीका लगवा लिया हो पर प्रमाण पत्र में न लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण न लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कई दूसरे नंबर का उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन

0: एक बात याद रहे, यू बस एक ही बार ठीक हो गए।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकु करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वहाँ के बाद कोविन के होम पेज के ऊपर दाई और कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो हो, वह नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाई और दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम चुटकी बजा से। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है तो आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर रही है। अगर हम बात करें मछली पालन की, तो मछली पालन व्यवसाय में किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावना है और देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। तालाबों, पोखरों और नहरों में लगातार पानी की कमी होती जा रही है, जिससे मछलियां पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं मिलती। ऐसे में मछली पालन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत में मछली पालन व्यवसाय विकास की ओर बढ़ रहा है। आज भारत के बहुत से किसान भाई मछली पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बहुत बढ़िया स्रोत बन के सामने आया है। बड़ी संख्या में हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, किसान भाई हैं, इस व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। अब बात आती है कि मछली पालन व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें, तो आप अपने जिले के मछली पालन विभाग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा करके मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मछली पालन व्यवसाय की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार है सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। किसान मित्रों, आजकल हमारे बहुत से किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना खुद का स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई या युवा साथी मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सोचते होंगे कि आखिर हम शुरू करें तो खर्चा कितना आएगा शुरुआत में। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, तो यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इस व्यवसाय से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप जरूर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाइएगा और वहां बात कीजिएगा कि हम मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो आपको सारी की सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से वहां बता दी जाएगी और इसके साथ ही आपको प्रशिक्षण के बारे में भी समझा दिया जाएगा। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन व्यवसाय के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप रविंद्र खालोर और उनके साथियों से ये रागनी सुन रहे थे। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े, साथ ही जो खेती में लागत आती है उसमें कमी आए। किसान मित्रों, आज के समय में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है। उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना आवश्यक है, तभी हमें पता चलता है कि किन पोषक तत्वों की कमी है हमारी मिट्टी में और किन पोषक तत्वों की अधिकता है। मिट्टी का नमूना लेने के बाद उसकी जांच के लिए आप स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या फिर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के दफ्तर में जा सकते हैं और वहां जाकर के अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए सही खान पान का होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना जरूरी है और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की उपलब्धता है और किस पोषक तत्व की अधिकता या कमी है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलते हैं। तो आप कोई भी फसल करें,

अपने खेत में, लेकिन अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लें ताकि आपको फसल का भरपूर उत्पादन मिल सके। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह।

लोकेंद्र सिंह द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

प्रेमी साथियों, बहुत खुशामद की निर्भाग उर्मिला ने, लेकिन उन कमबख्त नीरज के माँ और बाप के दिल में

और उर्मिला ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। मेहरबानों, जिसका दुनिया में कोई साथी नहीं होता, उसका परमपिता परमात्मा हिमाती बन के आता है। उर्मिला की आवाज पड़ोसी पड़ोसी ने सुन लिया। दिन का पहर था, लोग इकट्ठे हो गए। उसकी जिंदगी थी, हाथों को तोड़ दिया और उर्मिला को जिंदा बचा लिया। मेहरबानों, गांव के लोगों ने

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
2: एफएम। शिशु के 6 महीने के होने के बाद
3: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
2: केवल माँ का दूध
3: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
2: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
3: दूध के साथ ओपी आहार की अहमियत।
4: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Namaskar. आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आपके लिए हाजिर हुई हूं कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है हिंसा को नो। और ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, उन्हें सशक्त करना ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर और जानते हैं कि महिलाओं से हो रही गैर बराबरी को किस तरह इस कहानी में दर्शाया गया है, और ये हम जानेंगे मधु की इस कहानी में। तो आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं ये कहानी।

0: आओ बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में।
1: हाँ माँ, आज ना कुछ काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई है।
0: अच्छा, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ।
1: ठीक है माँ, मैं धो लेता हूँ। माँ, आज क्या बनाया है आपने खाने में?
0: बेटा, तेरी पसंद के करेले और साथ में खीर बनाई है।
1: वाह माँ, मजा आ जाएगा। एक तो आपके हाथों का ये टेस्टी टेस्टी खाना, और ऊपर से ना भूख भी बड़ी जोर से लगी है मुझे।
0: अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू जरा हाथ मुँह धो ले, फिर मुझसे मिलने आना, कुछ बात करनी है।
1: लो माँ, आ गया मैं। बोलो, क्या बात करनी है?
0: बेटा, बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे।
1: अरे माँ, क्या बोल रही हो, जरा खुलकर बताओ।
0: बेटा, बहू के पांव भारी हैं, पर चाल ढाल से लग रहा है कि इस बार भी उसकी कोख में बेटी ही है।
1: माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो?
0: बेटा, ये बाल मैंने

0: धूप में सफेद नहीं किए हैं। लिखवा लो मेरे से, इस बार भी लड़की ही है।
1: माँ, बिना जांच करवाए हम ये कैसे कह सकते हैं, आप ही बताओ।
0: बेटा, मैं यही कहना चाह रही थी कि कल बहू की जांच करवा लेते हैं।
1: पर माँ, ये तो गैर कानूनी है ना, और कुछ ऊंच नीच होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
0: कुछ नहीं होगा, मेरी सहेली है ना वो शोभा, उसने सारा इंतजाम कर लिया है। बस मुझे डर है तो एक बात का।
1: किस बात का डर है माँ?
0: बेटा, बहू मानेगी?
1: अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी, आप बताओ कब जाना है?
0: कल 10 बजे तुम और बहू शोभा के घर पहुंच जाना, वे तुम दोनों को वहां ले जाएगी।
1: तो माँ क्या आप नहीं चलेंगी फिर?
0: नहीं नहीं, मैं गुड़िया को संभालूंगी, काफी शरारती हो गई है वो आजकल।
1: मधु, सोगी क्या?
2: नहीं नहीं, गुड़िया को सुलाते सुलाते पता नहीं कब आंख लग गई। आ गए आप, खाना लगा दूंगी।
1: ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देरी हो गई, खाना तो माँ ने खिला दिया है। चलो तुम सो जाओ, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है हमें।
2: डॉक्टर के पास क्यों?
1: अरे ये पता करना है लड़की है या लड़का।
2: आप अच्छी तरह से जानते हैं ना ये गैर कानूनी है।
1: तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब इंतजाम हो गया है, कुछ नहीं होने वाला।
2: आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मेरे इस बारे में क्या विचार है, फिर लड़का हो या लड़की इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
1: पर मुझे फर्क पड़ता है।
2: क्यों, क्या फर्क है इसमें?
1: वंश आगे कैसे बढ़ेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी, और तो और मेरी चिता को आग कौन देगा?
2: मैं नहीं मानती इन बातों को, और मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास।
1: तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, यूं तो मुझे अव्वल गुस्सा कभी भी नहीं आता, पर फिर आ जाए तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। मुझे मजबूर मत करो तुम हाथ उठाने पर।
2: पर सुन तो लो।
1: बस मुझे नहीं सुनना कुछ भी, तुम सुबह तैयार हो जाना, बस कह दिया सो कह दिया।
0: क्या हुआ बेटा, मान गई बहू रानी?
1: अरे मानती कैसे नहीं।
0: तो ठीक है, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप लोग नाश्ता करके शोभा आंटी के घर चले जाओ, वे आपको डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगी। आप लोग वहाँ कुछ नहीं बोलोगे, शोभा आंटी ही सारी बातें कर लेंगी, वहाँ से सभी बातें इशारों में ही होती हैं। अगर वे कहें लड्डू खिलाओ तो समझ लेना कि लड़का है, और अगर वे कहें बर्फी खिलाओ तो समझ लेना कि लड़की है। आ गए आप लोग, क्या कहा डॉक्टर ने?
1: माँ आपका अनुमान ठीक था, लड़की ही है।
0: हे भगवान, क्या पाप किए थे हमने। ठीक है, बच्चा गिराने की तैयारी करो।
2: माँ जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ।
0: देखो बहू, अच्छा यही होगा कि तुम प्यार से मान जाओ, बात बढ़ गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं पड़ोस में जा रही हूँ भजन कीर्तन के लिए, तुम शाम को अपना फैसला बता देना। बेटा, क्या कहा बहू ने, मानी कि नहीं?
1: बड़ी मुश्किल से मनाया है माँ, मान ही नहीं रही थी।
0: चलो बेटा, मान तो गई ना आखिरकार।
1: पर माँ, वो इस लेडी डॉक्टर के पास ना जाने के लिए मना कर रही है, जाना नहीं चाहती उसके पास।
0: तो फिर बेटा?
1: माँ उसका कहना है कि एक डॉक्टर है जिसका बहुत नाम है, और वो उसको काफी अच्छे तरीके से जानती भी है।
0: ठीक है बेटा, हमने तो पैसे देने हैं, क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कोई भी हो। तू इस नई डॉक्टर से मिलने के लिए टाइम ले ले, इस बार मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी।
3: मधु आप अंदर आ जाइए चेकअप के लिए। अरे अरे आप और माताजी इधर ही इंतजार करिए।
2: अरे मधु, तुम? सीमा तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम इस तरह मिलेंगे, पर तुम तो गायब ही हो गई हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। मैं जब भी गांव जाती थी तुम्हारे बारे में जरूर पूछती थी, मगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ बता नहीं पाया। बस इतना पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है, और अंकल आंटी भी गांव छोड़कर तुम्हारे भाई विजय के पास मुंबई चले गए हैं। हाँ सीमा, गांव से बिल्कुल ही नाता टूट गया है। जब से माँ और बाबूजी मुंबई में शिफ्ट हुए हैं तब से गांव जाना ही बंद हो गया है। पर तुम्हें सोशल मीडिया पर भी बहुत ढूंढा मैंने, शायद तुम फेसबुक वगैरह भी नहीं चलाती हो। बस क्या बताऊँ, जिंदगी बस कुछ ऐसे ही हो गई है। पर सच कहूँ मधु, तुमसे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं।
4: हाँ बिल्कुल,
2: ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है मधु। अब तुम इसी शहर में हो तो बातें तो होती रहेंगी, पर पहले ये बता दो कि यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी थी मैंने, सब ठीक ही लग रहा था। क्या बताऊं सीमा, बस वही सदियों पुरानी दास्तां, सास और पति को बेटा चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है, और इस बार भी लड़की ही।
4: फिर से लड़की है मतलब?
2: हाँ सीमा, टेस्ट करवाया।
4: अरे टेस्ट और तुम? I just can't believe this।
2: क्या बताऊं सीमा, कोई सुनने को ही तैयार नहीं, बहुत अकेली पड़ गई हूँ।
4: विश्वास नहीं होता कि तुम वही मधु हो जिसने मुझे भी जीना सिखाया था। तुम्हारी वजह से मैं माँ और पिताजी को मना पाई थी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। क्या तुम वही मधु हो जो लड़कियों के हक के लिए पुलिस और प्रशासन से भी अकेले भिड़ गई थी? क्या ये वही तुम हो जिससे सारे रोड साइड रोमियो घबराते थे? ना जाने मेरे जैसी कितनी महिलाओं का जीवन तुमने बचाया है।
2: हाँ सिंह, कभी कभी हालात इतने विवश कर देते हैं, और फिर पिताजी भी कर्ज में डूबे थे, और राकेश ने प्रस्ताव रखा था कि वो मेरे पिताजी का सारा कर्जा चुका देंगे अगर पिताजी मेरा हाथ उनके हाथ में देंगे। यूं तो ये सीधी सीधी सौदेबाजी थी, पर काफी सोच विचार करके मैंने हाँ की थी। और एक तो पिताजी को बचाने का भी कोई और तरीका नहीं, और राकेश और उसका परिवार काफी अच्छा था। लेकिन सच पूछो मैं आज भी कहती हूँ कि वो काफी अच्छे लोग हैं, पर पता नहीं क्यों उनके दिमाग पर लड़की का भूत सवार है।
4: मधु तुम ही कहती थी ना कि अगर हालात से एक बार समझौता कर ले इंसान तो उसे हर बार समझौता करना पड़ता है। और तुम तो ये भी कहती थी कि जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही अपराध है। मधु मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी।
2: पर सीमा।
4: पर कुछ नहीं मधु।
2: सुनो सीमा।
4: नहीं मधु मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस इतना बता दो कि मुझ पर विश्वास है या नहीं।
2: हाँ हाँ अपने से ज्यादा करती हूँ।
4: तो बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ सिर्फ एक बात की इजाज़त लेनी है तुमसे।
2: वो क्या?
4: देखो मधु मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे पति और सास के सम्मान को कोई ठेस न पहुँचे। मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन में इससे कोई परेशानी ना आए, पर फिर भी थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा।
2: मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जो तुम्हें सही लग रहा है वो ठीक है।
4: तुम ही कहती थी ना कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो सब ऊपर वाले पे छोड़ दे।
2: हाँ हाँ कहती तो थी।
4: तो समझ लो कि ऊपर वाले ने आज मुझे ही भेजा है तुम्हारी इस समस्या का समाधान करने के लिए।
2: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो।
4: जरा इनके पति राकेश जी और माता जी को अंदर भेजना। आइए राकेश जी बैठिए। माता जी आप भी बैठिए। तो राकेश जी आप एक पुत्र की चाहत रखते हैं?
5: जी हाँ डॉक्टर साहिबा, हर कोई रखता है।
4: सुना है आपके पहले भी एक लड़की है?
5: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना है।
4: और मधु जी की मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद मुझे ये भी पता चला है कि उनकी पहले भी लड़की हुई थी, पर दुर्भाग्यवश वो जन्म के तुरंत बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी।
5: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने।
4: और अभी फिर से आपकी पत्नी के गर्भ में लड़की है?
5: हाँ, जी हाँ।
4: यानी कि आप तीनों ही बार अपनी पत्नी को सिर्फ लड़की ही दे पाए हैं?
5: ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, इसमें मेरा क्या दोष है?
4: अरे क्या आपको नहीं पता कि लड़का या लड़की होना स्त्री के बस में नहीं होता, बल्कि पुरुष का वीर्य इस बात को तय करता है कि लड़की होगी या लड़का।
5: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
4: ठीक है मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई। और औरत में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अब लड़का होगा या लड़की ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पुरुष के वीर्य में किस प्रकार का क्रोमोसोम अधिक है। यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम है तो स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर वो लड़की का निर्माण करता है, और यदि पुरुष का वाई क्रोमोसोम है तो वो स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलकर लड़के का निर्माण करता है।
5: ठीक है मैं आपकी बात समझ गया हूँ, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए बार बार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मैडम जी।
4: हाँ करनी होगी, पर क्या आपने दो बातों की ओर ध्यान दिया है?
5: कौन सी दो बातें?
4: सुना है आप गणित के प्रोफेसर हैं।
5: अरे हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना है।
4: तो मतलब आप 3 में से 3 बार यानी कि 100% अपनी पत्नी को लड़की ही दे पाए हैं, तो क्या संभावना है कि आप चौथी बार लड़का दे पाएंगे?
5: जी जी जी।
4: और दूसरी बात सुनिए, अगर चौथी बार भी लड़की हो गई, तो क्या आप फिर से बच्चा गिरवाएंगे? और फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार, और आप जानते हैं इसका एक स्त्री के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?
0: अरे डॉक्टर साहिबा, ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो मेरे बेटे को? क्या पहले जमाने में औरतें 8-10 बच्चे नहीं जनती थी?
4: देखिए माताजी, पहली बात तो ये है कि बच्चा जनना स्त्री के लिए गर्व का विषय होता है, साथ ही उसके स्त्रीत्व को भी पूरा करता है। लेकिन बच्चा गिराना न केवल शारीरिक रूप से कष्टदायी है, बल्कि मानसिक रूप से भी शोषण से कम नहीं है। स्त्री एक हीन भावना से ग्रसित हो जाती है, और जबकि उसका कोई दोष भी नहीं होता। और रही बात पुराने दिनों की, तो तब के मापदंड और परिस्थितियां भिन्न थी। हमें आज के समय की तुलना उस युग से नहीं करनी चाहिए।

0: और आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो। जी हाँ, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं आज की कहानी। और इस कहानी में जी हाँ बात हो रही है मधु की, जो कि गर्व से है और उसके परिवार में इस समय हलचल मची है कि घर पे बेटा ही आना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, और अगर बेटी है तो बेटी को गिरा दो। तो श्रोताओं, आज के समय में भी जहां लड़का और लड़की एक समान समझे जाते हैं, जहां पर दोनों लोग बराबरी का हक समझते हैं और बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस समय में भी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसी पुरानी मानसिकता से जूझ रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता बदलें और ये समझें कि समय के साथ बदलाव बहुत आवश्यक है, और अगर नहीं बदलेंगे तो नुकसान हमारा ही है। तो जी हाँ, इसी कहानी का अगला अंक हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही, और साथ ही उस कड़ी में जानेंगे कि किस तरह से मधु की कहानी में अगला मोड़ आएगा और किस तरह से जिंदगी में जो चीजें हैं वो बदलेंगी, और सब कुछ ठीक होता है ये नहीं, ये भी हम जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: ओले ओले ओले, हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: डेंगू और मलेरिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
2: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राग यमन। राग यमन का प्राचीन नाम कल्याण है, इसलिए यमन को कल्याण भी कहा जाता है। इस राग की उत्पत्ति भी कल्याण थाट से ही हुई है, अतः इस राग को कल्याण थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग के आरोह और अवरोह में कुल सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अतः इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसमें तीव्र मध्यम अर्थात तीव्र म के अतिरिक्त शेष सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का वादी स्वर गंधार अर्थात ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नि है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इस राग की प्रकृति गंभीर है, इसमें ख्याल ध्रुपद तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। राग के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। अब प्रस्तुत है इस राग का आरोह।

आइए अब सुने राग यमन की स्वर मालिका जो तीन ताल के मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग यमन की स्वर मालिका की स्थाई

अभी आपने राग यमन की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है सुनो हे भगवन विनती मोरी। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

स्वाभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बलवन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बलवन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान, उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म

0: एड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वर मालिका और स्वर मालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसी। इस श्रृंखला में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर मालिकाओं का समावेश किया गया है। आइए संगीत की इस यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। प्रस्तुत है श्रृंखला राग रस बरसी।

राग भैरवी। राग भैरवी की उत्पत्ति भैरवी थाट से ही हुई है, अतः इस राग को भैरवी थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग की एक विशेषता ये भी है कि इस राग में सप्तक के कुल चारों कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। अन्य शेष तीनों स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसकी आरोह और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी सा है। ये अत्यंत ही लोकप्रिय राग है। इस राग में छोटा ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा आदि गाई बजाई जाती हैं। इस राग का गायन समय प्रातःकाल है। राग भैरवी के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। प्रस्तुत है राग भैरवी का आरोह।

अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं राग भैरवी की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग भैरवी की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, भोर भई चल गुरु दर्शन को। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्तुति का प्रयोग शिक्षण एवं अभ्यास हेतु करें। धन्यवाद।

राग रस बरसी परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य, परियोजना संचालन डॉक्टर हरमेश लाल, आलेख इंद्रदेव प्रसाद, विषय परामर्श संगीत एवं गायन हरभजन सिंह, उमा गर्ग, राकेश पंडित, संतोष कुमार एवं कुमार मुखर्जी, तबला वादन अमजद खान, तानपुरा वादन अरुण प्रभाकर, ध्वनियांकन भूषण गजभिये, सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा तथा विषय समन्वय काव्य रचना निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे
2: देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है
3: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया
2: ये क्या मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी
3: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी जानती हो ना अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है याद रखें पूरा कोर्स तो पक्का इलाज
3: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना
2: कल नहीं अभी
5: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान
6: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सब की साफ सफाई करते हैं।
3: और आस पास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया।

0: हम लोग हर रविवार सफाई की जिम्मेदारी, मिलकर पढ़ेंगे मच्छरों पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना, और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
1: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है वो एक यंग देश माना जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है
0: जी।
1: संख्या के द्वारा तो, और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाए, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी कि अगर हम 2024 की बात, भारत देश में 1,71,000 सोसाइटी
0: जी,
1: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
0: यस जी,
1: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
0: जी, जी।
1: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
0: बेशक बेशक, समाधान है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राबता, और ये राबता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक कहीं जाएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ। तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो कीवर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश, वी ब्रश आवर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन,
0: राइट।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर

0: हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना
1: क्या बात है?
0: और एक ठहराव लाना वो कहीं हम भूल चुके हैं,
1: भूल चुके हैं।
0: और हम भूल चुके हैं तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए। और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ All your impurities which are there in your mind.
1: क्या बात?
0: आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगर अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं तो आईपैड छोड़ते हैं, तो लैपटॉप छोड़ते हैं, तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस्ड हैं कि कहीं पे एक पॉज लेना भूल गए हैं। तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
1: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। मैम आपकी बात को मैं समझ गया, और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से। और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा। सो लिसनर्स, कहने का आशय यही कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय, इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो कहीं जाएगा मत, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है। जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूजिक की आवश्यकता होती है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ प्रोग्राम है राब्ता।

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राबता और राबता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें तो वही हैं लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें, और वाकई आपने इस सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बारंबार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है,
0: please,
1: अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है
0: जी जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है, और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी, या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से, या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है, और अगर घाव जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट। वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड़ प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या आई फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप जरूर बातें साझा करिएगा, जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ज़रूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। हे बाबू, हाँ बोल दें।

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सुना सुना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं, बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो कहते हैं कि ये खुदा के, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ, जैसे आपने कहा, पॉजिटिविटी लेकर आ पाए, तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल।
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना, और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना। हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा? मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम से जुड़े होने के हम लोग अब एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात कर रहे हैं इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, कि इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए

0: आप बहुत चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर हम सिम्टम्स देखें, तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है, और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है।
1: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी, लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरती से, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मेरा मानना यह है कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर, कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर। अजय बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने ये भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से, तनाव देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस, जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की। मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल एज ए पेरेंट, और ऐसे नहीं है, ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसे रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया, शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट, एज गार्जियन, इफ़ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें, हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे। तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी बात को सुने, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी। तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं, तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड। हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी, और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पाठ है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है और वो किया गया। और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था। तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे। तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें। उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा। दूसरी चीज़, अब आई विल कम टू, आई विल जस्ट टेक टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप। जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे, दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स टोटल, 30 सेकेंड्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स,
0: सब कुछ
1: तुरंत अभी है। तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी, और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है। तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था, और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो, तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है, और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई
0: जी।
1: जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए, और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन किए गए, तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं

0: आया था, उनके स्कोर काफी बेहतर थे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे और तुरंत दे गिव इन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस. तो क्या इससे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स. संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय.
1: जी
0: राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. अस्तो मा सद्गम्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स. तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से. कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे.
1: जी जी
0: जी. तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रखकर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा, कुछ दो चार बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते. तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो दो मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आँख बंद करके बैठें, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था. क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं. और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं. बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी. अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं.
1: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूँ. और बस लिसनर्स, हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए. और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए. अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते, अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं. तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
1: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम. राब्ता कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करिएगा 0120404020205 पर. फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा।

0: ट्वेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: solution.
1: Never buy investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: गणना के पहले चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साक्षरता भारत 2047 बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। हेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर को कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शार्ल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफ है एनिमेशन VFX गेमिंग विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एड लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: द प्रोग्राम्स ऑन शारदा स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आर डिज़ाइन्ड टू थिंक अबाउट आर्टिस्ट एंड कल्चरल इंस्पिरेशन।
4: सो यू हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है।

0: ये फील्ड आप ही के लिए है, तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।
3: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: For more information, please

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना बनाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से दुश्म दुश्म लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर।

0: बचाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है तैयार।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश, अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जाँच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
5: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
6: प्लीज,
5: थैंक यू।
7: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
5: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
7: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रख लें।
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तो सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
2: जनहित में।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।